लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें JRD टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के

लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 8.15 मीटर की दूरी पार करनी थी, लेकिन उसे वो नहीं कर सके। अपनी दौड़ से पहले अपने खास अंदाज में खुद में जोश भरने के लिए उन्होंने समर्थकों को इशारा किया ताली बजाने का और कूद की शुरुआत की। केएल के शिशंकर के पिता एस मुरली राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं और उनके कोच हैं। उनकी हर चीज का वो पूरे समर्पण के साथ ध्यान रखते हैं।
1: Actually, always I am a coach and father. We talk about sports only. Whenever we meet, always we plan.
0: हरियाणा में जन्मी मनप्रीत कौर का खेल जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 साल तक प्रतिबंध झेलने के बाद वो सम्मान वापस कमाने के लिए कृत संकल्प होकर फील्ड में आई और बहुत कुछ हासिल कर लिया। ग्लासगो में भी देश के लिए मेडल पाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच गई। 5वें प्रयास में 17.49 मीटर फेंका, लेकिन 4थे स्थान पर रह गई। पुरुषों के शॉर्ट पट में

0: तेजिंदर सिंह तूर का कहना ही क्या। दो बार के एशियाई चैंपियन तूर ने आसानी के साथ 20 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया। देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्वरूप पर उनका कहना था,
1: नीरज ने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, तब से हमारे जो इंडियन एथलीट्स है अभी सब अपने अपने इवेंट में बेस्ट करने मतलब कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट करें वर्ल्ड लेवल पर, मुझे लगता है आने वाले सालों में अच्छा करेंगे।
0: तो उनके साथ ही समरदीप सिंह गिल तूर पाजी की छाया से निकलकर अपना स्थान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19.95 मीटर के साथ वे भी क्वालिफाई कर गए। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में कुल मिलाकर सातवें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी भी सातवें और आठवें बेस्ट टाइम निकालकर क्वालिफाई करने में सफल रहे। पारुल चौधरी ने पिछले एशियाई खेलों में 2 दिन में 2 पदक जीते थे, 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर में। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। वो पांचवें स्थान पर रहीं 9:26.75 के साथ।
2: The stunning 1-2 finish marked a watershed moment in Indian para-athletics history, etching Dilip Mahadu Gawit and Mohammad Basil into the record books as they swept the podium on the Grand Commonwealth Games stage. Dilip's historic gold was secured with a blistering Games record time of 10.71 seconds, a milestone achieved by exploding off the blocks and maintaining a relentless lead to rewrite the competition's record books. By turning the sprint track into a showcase of absolute dominance, capped by that new standard, the duo not only elevated India's standing in international short distance para sports but also delivered a powerful statement of intent for the nation's rising sprinting pedigree on the global map. Dilip Mahadu Gawit and Mohammad Basil delivered a breathtaking 1-2 finish for India in the T47 100 meter finals at the Commonwealth Games, with Gawit surging over the final 30 meters to secure the gold medal in a games record time of 10.71 seconds, while Basil stormed home in 10.83 seconds to claim a brilliant silver ahead of England's Kevin Santos. Dilip Mahadu Gawit, a name who has etched himself in the record books of history. In men's discus throw F42-44, F61-64, Devendra Kumar and Sagar Thayath represented India in para-athletics finals. Sagar Thayath finished in 6th position with a top effort of 46.35 meters, while Devendra Kumar was placed close behind, recording a throw of 48.20 meters.
0: भारतीय बॉक्सिंग के लिए ग्लासगो 2026 का सातवां दिन एक कभी न भूलने वाली उपलब्धि लेकर आया। 6 मुक्केबाज विभिन्न भार वर्गों में रिंग में उतरे और सभी 6ों ने जीत हासिल करके पदक पक्के कर लिए। यकीनन एक अविस्मरणीय दिन जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। शुरुआत की भिवानी की मुक्केबाजी फैक्ट्री की एक और पौध साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की काइटलिन फ्रेयर्स को ये एहसास करा दिया कि क्यों उन्हें जायंट किलर कहा जाता है। एक तरफा बाउट रही 5-0 से साक्षी सेमीफाइनल में। दूसरी बाउट में थी राजस्थान से आने वाली पहली इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी। न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से कांटे की फाइट हुई। दूसरे राउंड में अरुंधति ने बढ़िया प्रहार किए और विपक्षी ने एक पेनल्टी भी खाई। निर्णय एकमत नहीं रहा और 3-1 से अरुंधति के पक्ष में गया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं मेरी जीत को मेरे छोटे भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी। और आज आसान तो नहीं था, बट अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आए तो इसीलिए है कि गोल्ड लेना है, ये तो बस एक सीढ़ी थी।
0: और अब बारी थी लड़कों की। भिवानी के ही सचिन सिवाच के सामने बोत्सवाना के ट्रेजर मॉर्गी थे। वो कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। तीनों राउंड में सचिन के मुक्के ही मुक्के लगातार दिखते रहे रिंग में और 5-0 से एक और निर्णय भारत के पक्ष में। तो अब उत्साहित अंकुश पर भला कौन अंकुश लगाता। सेशल्स के जेड मिकॉक तो पूरी कोशिश करके भी नहीं लगा सके। अंकुश के मुक्कों के आगे बेबस हो गए और सर्वसम्मति से एक और जीत 5-0 के साथ।
4: The winner in the red corner representing India.
0: 90 किलो में नरेंद्र बेरवाल भी हरियाणा से ही हैं और उन्होंने हैवीवेट वर्ग में भी भारतीय परचम फहरा दिया। समोआ के माइकल सेको की कड़ी चुनौती थी उनके सामने, लेकिन आखिरकार वो इसको पार करने में सफल रहे और 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से जीत गए।
4: In the

0: पिछले खेलों की कांस्य पदक धारी जैस्मिन लंबोरिया लगातार दूसरे खेलों में सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड की एलिज क्लीन को एक बेहद कड़े मुकाबले में उन्होंने मात दी। बॉक्सिंग में अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन 2022 बर्मिंघम में रहा है। 3 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक। पदकों के मामले में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि 10 पदक पक्के हो गए हैं। और इस उपलब्धि पर ग्लासगो में मौजूद बॉक्सिंग के राष्ट्रीय कोच सीए कुटप्पा ने आकाशवाणी को ये खास संदेश भेजा।
1: एवरीवन फॉट वेल, स्पेशली नरेंद्र हु पुट अप ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 120 केजी बॉक्सर। वी स्टिल हैव टू मोर स्टेप्स टू रीच द गोल्ड मेडल एंड द एंटायर टीम इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड डिटरमाइंड टू अचीव दैट गोल। ए स्पेशल थैंक्स टू ऑल द इंडियन टीम मेंबर्स, कैंप कोचेस एंड सपोर्टिंग स्टाफ। दिस परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ एवरीवन्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड टीम वर्क। We are also grateful to the constant support and encouragement from BFI, President Sri Ajay Singh, the Secretary General, Executive Director Arun Malik, and all the members of the Boxing Federation of India. Thank you everyone for support. Jai Hind, Jai Bharat.
2: India's sole weightlifter in action, Sanjana, suffered a disappointment after recording a did not finish in the women's 77 kilogram category. She was unable to settle underneath the bar on any of her 3 snatch attempts, including a final effort at 94 kilogram, resulting in an early exit from the tournament. Sanjana shot to prominence at the 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, winning 3 bronze medals with a combined total lift of 220 kilograms, which included 96 kilogram in snatch and 124 kilogram clean and jerk. She was considered a strong silver medal contender but unfortunately bowed out with a did not finish after failing all 3 of her snatch attempts at 94 kilograms. Despite the setback, the Indian weightlifting team has concluded the majority of its heavy campaigns with a highly successful haul of 7 medals, 1 gold, 5 silver and 1 bronze. And we have some bright good news for all the fans of lawn bowls. At the 2026 Commonwealth Games, India's men's pair lawn bowls team secured a strategic second successive group stage win by defeating Namibia, with Navneet Singh and Dinesh Kumar winning the first set 5-3 and the second set 6-3. From one good news to another, Indian lawn bowler Nayan Monisekia bounced back to defeat Carolyn Whitehead of the Isle of Man in a round 2 match of the women's single sectional play Section C at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Following a 0-2 loss to Wales' Amy Williams in round 1, this victory kept Sekia's campaign alive in Section C as she headed into the subsequent sectional rounds. Let's now have a look at how our para swimmers fared on day 7 of the ongoing Commonwealth Games 2026. No medals were won by the Indian para swimmers on day 7 of the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Competitions in the pool concluded with 2 Indian athletes qualifying for and racing in the men's 50-meter freestyle S7 final. These 2 athletes were Chaitanya Vishwas Kulkarni and Suyash Narayan Jadhav. Chaitanya Vishwas Kulkarni finished 4th place in the men's 50-meter freestyle S7 final, clocking a time of 32.77 seconds, while Suyash Narayan Jadhav finished 6th place in the same final event with a time of 35.35 seconds. The gold medal in the final was secured by South Africa's Christian Sedi, who clocked 28.45 seconds to establish a new games record also. Overall, the Indian para swimmers successfully secured multiple final appearances across the competition layout but missed out on reaching podium placement.
0: आज एथलेटिक्स में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा अपने फैंस के सामने होंगे और साथ में रोहित यादव और यशवीर सिंह भी। डेकाथलान में तेजस्विन शंकर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और ट्रिपल जंप में सिल्वा प्रभु और प्रवीण चित्रावल उतरेंगे। 400 मीटर सेमीफाइनल में विशाल टीके होंगे और शॉर्ट पट में स्टार तेजिंदर सिंह तूर और उनके जोड़ीदार समरदीप सिंह गिल फाइनल में होंगे। 200 मीटर के सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर भागेंगे और महिलाओं के डिस्कस थ्रो में निधि रानी और सीमा होंगी मैदान पर। 5000 मीटर में पारुल चौधरी पदक की खोज में ट्रैक पर उतरेंगी।
2: यू विल गेट टू विटनेस पैरा ट्रैक साइकिलिंग इन विच वुमेन्स C4 C5 4000 मीटर्स इंडिविजुअल परसूट इवेंट विल बी हेल्ड। लीशा दास फ्रॉम इंडिया विल बी टेकिंग पार्ट इन द क्वालिफाइंग राउंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इन ट्रैक साइकिलिंग मेन्स टीम स्प्रिंट इवेंट विल बी कंडक्टेड इन विच

0: Lovepreet Singh from India will be representing our country in the finals.
1: Australia has surpassed a century of medals, has total of 103 medals and is at the top of the tally. Canada is at number 2 and England at number 3. India with 3 gold, 9 silver and 3 bronze is placed at number 8.
2: आज की रिपोर्ट बस यहीं तक। संपादक स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और साथ ही अपनी साथी एंकर साक्षी मंडवाल के साथ मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, कल इसी समय फिर मिलना मत भूलिएगा। नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.
4: ये है
5: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्युझिकली योर्स।
6: श्रोतेहो, आता आपण ऐकणार आहोत आपला विशेष कार्यक्रम अज्ञात मुंबई।

0: नमस्कार, मी परेश मुकाशी आणि आपण ऐकत आहोत 107.1 MHz वर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची FM रेनबो वाहिनी। मराठी गाणी, हिंदी गाणी, जुनी गाणी, नवी गाणी, टप्पा गप्पा, ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन इत्यादी इत्यादी इत्यादी ऐकत रहा आणि आनंद घेत रहा।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
6: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
7: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
5: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
8: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जन स्वराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की

0: वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूर संचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है,

0: शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाई इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, "The amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases."
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bankipur Assembly constituency in Patna. Our correspondent reports that voters have been arriving at polling stations since early morning to cast their votes.
4: Polling is progressing peacefully across all 422 polling booths of 164 polling stations in the Bankipur Assembly constituency. Polling will continue till 5 p.m. A traditional stronghold of Bharatiya Janata Party, the seat is witnessing a contest among 25 candidates this time. A total of 3,79,616 voters will decide the electoral fate of the candidates. Although the main contest is believed to be between BJP's Neeraj Kumar, Jan Swaraj's Prashant Kishore and Rashtriya Janata Dal's Rekha Kumari. The by-election was necessitated following the resignation of BJP's national president Nitin Naveen from the assembly seat. Counting is scheduled on 3rd August. Savita Parekh, Akashwani News, Patna.
2: Bihar government has decided to reopen the closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. A proposal to this effect was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Samrat Chaudhary.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, मुंबई सिटी, गुड मॉर्निंग। 8:41 और 12 सेकंड और आपका अपना चैनल FM रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो गीत संगीत के दीवानों, FM के चाहने वालों, जाग जाइए। थर्सडे की ब्राइट मॉर्निंग, 30 जुलाई 2026 का दिन, बाहर बरसात का मौसम है, बरसात अपना रंग दिखा रही है और आपके साथ इस चैनल पर इस वक्त है आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। कार्यक्रम मस्त मुंबई में आज के सितारे। तो दोस्तों, गेस कीजिए आज हम किस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो धुन आपको सुनाई दे रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किस हस्ती के बारे में बात करेंगे, उनका नाम क्या हो सकता है। तो व्हाट्सएप के जरिए हमें जल्दी से जल्दी बताएं, जिनका जवाब सही होगा उन सभी के नाम मैं ऑन एयर लूंगा। सुनते रहिए FM रेनबो

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

0: 8:57 हो चुके हैं मुंबई सिटी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर, और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन। 30 जुलाई 2026 और दिन है गुरुवार का। कार्यक्रम आज के सितारे, यानी हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने ये गाने सुनकर जो जवाब दिए हैं काफ़ी हद तक सही हैं, उनके नाम मैं ऑन एयर लेने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि आज के सितारे में हम किस बड़े सितारे, किस बड़ी हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इनका नाम है वैजयंतीमाला। जी हाँ, वैजयंतीमाला का बहुत ही खूबसूरत अर्थ होता है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और इतना खूबसूरत और इतना अच्छा नाम है वैजयंतीमाला की क्या कहा जाए। और ऐसी ही उनकी हस्ती है, ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी है, और इसी तरह से उन्होंने पूरे आन बान शान के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया है। 13 अगस्त 1933 को मद्रास के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ। दोस्तों, आज हम मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं। वैजयंतीमाला जी की मातृभाषा तमिल है। उनकी मदर वसुंधरा देवी तमिल फिल्मों की बहुत बड़ी स्टार रही हैं, और वैजयंतीमाला ने बहुत जल्दी यानी बहुत कम उम्र में भरतनाट्यम डांस सीखना शुरू कर दिया था। 1940 में सिर्फ, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने वेटिकन सिटी में परफॉर्म किया, यानी अपनी भरतनाट्यम की लाइव परफॉर्मेंस दी। और 13 साल की उम्र में वैजयंतीमाला ने स्टेज पर क्लासिकल डांस के शोज़ करने शुरू कर दिए थे। आप सोच सकते हैं कि 7 साल 10 साल की उम्र में कितनी समझ होती है इंसान को, इंसान कितना फोकस कर पाता है, कितना फोकस कर पाता है। लेकिन वैजयंतीमाला ने बहुत कम उम्र में बड़ी बड़ी काम करने शुरू कर दिए थे। और 16 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म सामने आ गई थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। तो आज के सितारे में आज हमारे कलाकार हैं वैजयंतीमाला जी। तो सुनते रहिए FM रेनबो। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस।

0: दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जी हाँ दोस्तों, 9:16 और 36 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आज के सितारे में हमारे सितारे हैं वैजयंती माला जी, और उन्हीं की फिल्मों के गाने मैं आपको सुनवा रहा हूँ और उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वैजयंती माला ने अपने करियर की शुरुआत 1949 में एक तमिल फिल्म से की थी। 1951 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई, नाम था बहार। जैसा फिल्म का नाम था वैसा ही वैजयंती माला जी का रुतबा था। देखिए, उनके गानों का ऐसा नशा, ऐसा खुमार है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। ये उनकी तमिल फिल्म, जो पहली तमिल फिल्म आई थी, उनकी पहली हिंदी फिल्म उसी का रिमेक थी। फिल्म बहुत चली, सिल्वर जुबली की, इसीलिए इसे हिंदी में बनाया गया था। इस फिल्म के लिए वैजयंती माला ने हिंदी भी सीखी। हम सभी जानते हैं कि वो साउथ से हैं, लेकिन पहली हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने हिंदी की बाकायदा ट्रेनिंग ली, इस भाषा को समझा, और बाहर फिल्म सुपरहिट हुई और इसके गाने भी बहुत चले थे। तो चलिए सुनते हैं वैजयंती माला जी के कुछ और खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:25 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान, आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। बात करें ऑल टाइम ग्रेट एक्ट्रेस वैजयंती माला जी के बारे में। 1955 में उनकी फिल्म आई थी देवदास। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रमुखी का रोल किया था, बहुत ही कमाल का काम किया था। फिल्म ठीक ठाक चली थी लेकिन विदेशों में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया दोस्तों। लेकिन जब ये फिल्म दोबारा रिलीज की गई तो इसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये एक कल्ट फिल्म मानी गई। इस फिल्म के लिए वैजयंती माला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, लेकिन वैजयंती माला ने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरा रोल फिल्म में सुचित्रा सेन के बराबर था, इसलिए मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं लूँगी। एनीवे, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, तो चलिए कुछ ढूंढते हैं, शायद कहीं तो मिलेगा।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:35 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और आज के सितारे में हमारे सितारे हैं वैजयंती माला जी। और कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी स्टार हैं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब हमारे जिन लिसनर्स ने बहुत जल्दी दिया, उनमें सबसे पहले नाम आता है माहिम से दीपा पालकर जी का, और उसके बाद पंकज माहौड़ अमरावती से, फिरोज सिंह पुरिया जी ग्रांट रोड से, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, और तनुजा शर्मा अंधेरी से, लाली झा जयपुर से। हमारे इन सभी लिसनर्स ने बहुत ही जल्दी जवाब दिया, यानी लगभग 4-5 मिनट के बाद ही इनका आंसर आ गया था और सही था। और कुछ लिसनर्स ने काफ़ी स्मार्टनेस दिखाई, उन्होंने मेरे जवाब देने के बाद अपने मैसेज करने शुरू कर दिए व्हाट्सएप पे। एनीवे चलता है, 9:36 हो चुके हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और अगर आपका कोई अपना आपसे रूठा हुआ है तो आप इस गीत को उसे डेडिकेट कर सकते हैं, वो मान जाएंगे, ऐसा हमारा वादा है, यकीन रखिए। लता जी और मुकेश जी की आवाज़।

जी हाँ, मुंबई सिटी, 9:45 और 26 सेकंड, कार्यक्रम मस्त मुंबई और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। बात करें ऑल टाइम ग्रेट एक्ट्रेस वैजयंती माला जी के बारे में, और बताना चाहूँगा कि वैजयंती माला हिंदी फिल्मों की ऐसी पहली नायिका रही जो साउथ से हिंदी फिल्मों में आई और बहुत बड़ी स्टार बन गई। जी हाँ, इससे पहले हिंदी फिल्मों में साउथ की कोई भी एक्ट्रेस ना आई थी और ना ही उसे इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी जितनी बड़ी वैजयंती माला जी को मिली। और इस तरह साउथ से आने वाली हीरोइंस का रास्ता बन गया, कह सकते हैं कि साफ हो गया। और इसके बाद हेमा जी, रेखा, जया प्रदा, श्रीदेवी, ऐसी बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस आई, हीरोइंस आई, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना परचम फहराया। और नागिन फिल्म, जी हाँ, नागिन फिल्म वैजयंती माला की पहली एक ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसकी सफलता के बाद वैजयंती माला जी ने हिंदी फिल्मों में ही ज़्यादा काम किया और साउथ की फिल्मों में कम काम किया। तो अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, सिर्फ और सिर्फ बैक टू बैक आपके लिए दो प्यारे से गाने, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, गौर से सुनिएगा।

जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और हमारे आज के सितारे थे वैजयंती माला जी। और चलते चलते उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उनके करीबी दोस्त, उनके जानने वाले, उनके फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, यानी जब वो टीन एज में थी, उस वक्त उन्हें किस नाम से बुलाते थे और उन्हें कहा जाता था ट्विंकल टोज। जी हाँ, उनके करीबी दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके हम उम्र साथी उन्हें ट्विंकल टोज कहा करते थे। और वैजयंती माला जी गोल्फ की भी बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं, काफ़ी शौकीन रही हैं। फिल्मों से रिटायर होने के बाद वैजयंती माला जी ने चेन्नई में एक डांस

एकेडमी भी शुरू की थी, लेकिन जब वो राजनीति में सक्रिय हो गई तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मस्त मुंबई, और ये है आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी के साथ मैं रविन आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे ठीक 10:03 पर कार्यक्रम नमस्ते भारत में। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आप सभी को मैं छोड़े जा रहा हूँ, बल्कि यानी दोबारा मिलने वाला हूँ, और ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 10:38 हो चुके हैं। ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। आप सुन रहे हैं FM रेनबो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लगा लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान में उत्पन्न अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। FDI आयुक्त तुकाराम मंडे ने कहा है कि बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए इस आदेश को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल कैंटीन, छात्रावास की रसोई, मध्याह्न भोजन की रसोई और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को अनिवार्य खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करना होगा। जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11,97,00,000 दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। ये 1968 के बाद की सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। वहीं जापान में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 40,00,000 से अधिक हो गई है, जो अब तक की सबसे ऊंचे स्तर की वृद्धि है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम कर लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड के समय में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन और शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस। सुनते रहिए FM रेनबो।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 10:04 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत, और इस स्लॉट में आपके साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और कितना प्यार है हमें तुमसे, कितनी मोहब्बत है, इस गीत के जरिए हम कहना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा।

0: जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए तो हर चीज़ से आपका संगम होगा, यानी जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। और आज एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सपनों को हासिल किया, यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की, इतनी जान लगाई कि उन्हें उनके सपनों से संगम होकर ही रहा। और इस हस्ती का नाम है मिल्खा सिंह। हम इनके बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं। जब वो मैदान में दौड़ते थे तो ऐसा लगता था कि दौड़ नहीं रहे हैं बल्कि दोस्तों हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें इसीलिए उड़न सिख का नाम भी दिया गया। जी हाँ, एक ऐसा सिख, एक ऐसा सरदार जो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ रहा है, यानी वो दौड़ते नहीं थे, मैदान में हवा में उड़ते थे। मिल्खा सिंह का जन्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले पंजाब में हुआ था। उन्होंने जो बंटवारे का दर्द था, बंटवारे की तकलीफ थी, उसे बहुत करीब से देखा था। और सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि दोस्तों बहुत बुरी तरह से उसे झेला था। उस बंटवारे की वजह से उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ कह सकते हैं कि बर्बाद हो गया। बंटवारे के दौरान जो हिंसा हुई उसमें उन्होंने अपने माँ बाप और भाई बहनों तक को खो दिया। सोचिए, किसी इंसान के साथ ऐसा होता है तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा हम सभी लगा सकते हैं। और उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, यानी उनका बचपन था। एनीवे, आज स्लॉट में हम मिल्खा सिंह की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।

0: फर्स्ट स्मॉल स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
0: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह का बचपन तकलीफों से, पीड़ाओं से भरा हुआ था। बंटवारे के बाद वो भारत आ गए। भारतीय सेना में नौकरी मिलने के बाद उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली। उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। साल था 1960 और रोम के ओलंपिक में वो 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहे थे। ये मुकाबला उनके लिए बहुत खास था, लेकिन इस मुकाबले में वो चौथे नंबर पर आए और इस बात का उन्हें हमेशा दुख रहा। तो सुनते हैं अगला गीत, आसमां के नीचे।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और आज हमारा टाइटल है कहानियां सुनाती है। और इसमें आज हम बात करें ऑल टाइम ग्रेट एथलीट मिल्खा सिंह के बारे में। 1960 में जब वो पाकिस्तान गए थे तो वहाँ उन्होंने एक दौड़ में हिस्सा लिया था। मिल्खा सिंह ने वहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल खलिक को हराया था और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान जी। उन्होंने जिस तरह से मिल्खा सिंह को दौड़ते हुए देखा तो वो खुद को कहने से रोक नहीं पाए और कहने लगे, मिल्खा सिंह कोई इंसान नहीं है, बल्कि मिल्खा सिंह तो उड़न सिख है, यानी फ्लाइंग सिख। जी हाँ,

फ्लाइंग सिख का नाम उड़न सिख का नाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान साहब ने दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने ही देश में उन्हें इस तरह से दौड़ते हुए देखा कि बस वो समझ नहीं पाए कि इस इंसान को क्या कहा जाए। एनीवे, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत किशोरदा की आवाज़।

जी हाँ, मुंबई सिटी बात कर रहे थे मिल्खा सिंह के बारे में। तो बात करते हैं उनकी दौड़ने की स्पीड के बारे में। वो कितनी स्पीड के साथ दौड़ते थे हम सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में 45.73 सेकंड का समय लगाया।

सोचिए 45.73 सेकंड का समय लगाया था, कितनी बड़ी बात है। शायद हम इससे कई गुना ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और उनका सबसे ये शानदार प्रदर्शन था। ये रिकॉर्ड उन्होंने 1960 में ओलंपिक में बनाया था और 40 सालों तक, जी हाँ 40 सालों तक ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहा, नेशनल रिकॉर्ड रहा। 1959 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो चलिए हम मिल्खा सिंह की स्पीड से दौड़ तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा डांस करते हैं। जी हाँ थोड़ा सा डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं। तैयार हो जाइए।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत। और आज हम मिल्खा सिंह की जिंदगी की कहानी आपको सुना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में एक पल ऐसा भी आया था कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक भयानक फैसला किया था, और फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी में डाकू बनेंगे, डाके डालेंगे। और ये फैसला उन्होंने तब किया था जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनके माता पिता की क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई थी, और उस वक्त वो एक छोटे से बच्चे थे। आप सोच सकते हैं कि एक मासूम के दिल पर उस समय क्या बीती होगी जब उसने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा होगा। एनीवे, लेकिन इंडियन आर्मी में नौकरी मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने आर्मी की नौकरी के बाद ही रेसिंग में हिस्सा लेना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और उन्होंने एक एथलीट के तौर पर कितनी बड़ी सफलता हासिल की हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जिंदगी से कभी भी इंसान को हारना नहीं चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। उनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, दूरियां नज़दीकियां बनती रहती हैं और नज़दीकियां भी फिर दूरियां बनती हैं, क्योंकि अब लगभग 7 मिनट के बाद मुझे आपसे विदा लेना है और जाना है। और हमारी साथी आरजे भावना जी स्टूडियो में आ चुकी हैं और उनकी भावनाएं आपके लिए बाहर आ रही हैं, वो आपको एंटरटेन करना चाहती हैं। लेकिन जाने से पहले चलते चलते मिल्खा सिंह जी के बारे में आखिरी बात कहना चाहूँगा। साल 2013 में मिल्खा सिंह की लाइफ पर एक फिल्म बनाई गई थी, भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था फरहान अख्तर ने। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने का अधिकार फिल्म के निर्माता को दिया और बदले में फीस ली थी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फीस ली थी और ये फीस थी सिर्फ 1 रुपया। मिल्खा सिंह के रोल को करने के लिए फरहान अख्तर ने 18 महीने तक जमकर कड़ी मेहनत की, खूब पसीना बहाया और खुद को एक खिलाड़ी के तौर पर तैयार किया था। रोम ओलंपिक के दौरान मिल्खा सिंह ने दौड़ने के लिए जिन शूज़ का इस्तेमाल किया था दोस्तों, उन्होंने वो शूज़ फिल्म बनने के दौरान फरहान अख्तर को बहुत ही मोहब्बत के साथ गिफ्ट कर दिए थे। और वाकई ये फरहान के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था और उन्हें बहुत खुशी भी हुई थी। फिल्म का टाइटल भाग मिल्खा भाग फिल्म के गीतकार प्रसून जोशी के गीत से लिया गया था। तो दोस्तों, कार्यक्रम नमस्ते भारत में आज हम बात कर रहे थे ऑल टाइम ग्रेट एथलीट मिल्खा सिंह के बारे में, और इसी के साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहिए FM रेनबो। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 11 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और ये रहे इस घंटे के प्रमुख समाचार। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 के 10वें संस्करण की थीम का शुभारंभ किया। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच का 10वां संस्करण 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित IMC 2026 में वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, दूरसंचार ऑपरेटर, नवाचारों, स्टार्टअप, निवेशक, शोधकर्ता और नीति निर्माता भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आकार देने के लिए एक साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC अनिवार्य करने की समय सीमा 1 सितंबर तक बढ़ा दी है। राज्य परिवहन की बसों में छूट

0: पाने के लिए यह कार्ड जरूरी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यह फैसला उन बुजुर्गों और महिलाओं को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है जिन्हें अभी तक अपने कार्ड नहीं मिले हैं। इस छूट योजना में अमृत सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों व महिलाओं के लिए किराए में 50% की छूट शामिल है। पात्र यात्रियों से अपील की गई है कि वे बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया पूरी कर लें। ब्रिटिश कश्मीरियों ने कल बर्मिंगम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में नागरिकों की कथित हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। POJK में अशांति के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई कार्रवाई में कम से कम 40 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबरों के बीच यह प्रदर्शन हुआ। बात खेल जगत की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम कर लिए हैं। दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकेंड के गेम्स रिकॉर्ड और अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। यह ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का 3रा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन और शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। ये थे इस घंटे के प्रमुख समाचार।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।
0: गुड मॉर्निंग मुंबई, 11:03 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 और मैं हूं RJ भावना आपके साथ। अब मैं आ चुकी हूं तो आप भी अपनी अटेंडेंस जल्दी से हमें दे दीजिए कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं और इस वक्त आप कहां पर हैं, किस शहर से, किस गांव से, किस जगह से आप हमें सुन रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये बताइए हमें जल्दी से जल्दी 8657661071 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टिल देन, जब तक आपका अटेंडेंस आ रहा है, आप ही अगला गाना सुनिए रेखा भारद्वाज की आवाज़ में। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये अटेंडेंस जो है आपकी हम क्यों ले रहे हैं बताएंगे, बट इस अगले गाने के बाद।

0: 11:17 ऑन द क्लॉक। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो बेहतरीन गाने कौन से फिल्म के हैं तो बता दूं, इससे पहले जो आपने कान्हा ठुमरी थी वो जो सुनी, वो वीर फिल्म से रेखा भारद्वाज, शबाब सबरी, तोशी और शारिब ने गाए है। और एट द सेम टाइम आपने जो अब इसी वक्त जो लेटेस्ट सॉन्ग सुना, जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ में दिल्ली सिक्स का ये गाना अर्जिया। वेल, ये दो गाने बैक टू बैक आपने सुने हैं और इसी के साथ इन गानों के पहले मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जहां कहीं से भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं अगर, तो आप अपना अपना अटेंडेंस जब दे रहे हैं तो कौन कौन और कहां से सुन रहे हैं हमें वो ज़रूर बताइए। और बताएंगे कैसे, व्हाट्सएप पे 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्योंकि जैसे लोग सोशल मीडिया पर अप्रिसिएशन पोस्ट करते हैं ना, यानी सराहना देना, वैसे ही आज आप लोगों को भी अप्रिसिएशन मिलने वाली है। लेकिन ये अप्रिसिएशन किस चीज़ के लिए है, आखिर क्यों आप लोगों की सराहना करने वाली हूँ मैं, उस चीज़ को जानने के लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा। सो सुनते रहिए, कीप ट्यून्ड इन FM रेनबो 107.1 बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स, राइट?
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
0: वेल, अप्रिसिएशन के अलावा ब्रेक फ्री प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, और आज ब्रेक फ्री पर किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो भी बताऊंगी, बट थोड़ी ही देर में। तब तक कीप लिसनिंग।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
3: चलिए, जो अब तक अटेंडेंस लगा रहे हैं या लगा चुके हैं उनका तो वेलकम है ही, लेकिन जो अब तक सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम मैसेज करें या ना करें, उनका भी स्वैग से स्वागत है। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। ब्रेक फ्री प्रोग्राम है और आपको पता है इस सेगमेंट में हम यूजली आपसे कहते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आप फ्री होना चाहते हैं, कौन सी वो बंदिश है जिनसे आप आज़ाद होना चाहते हैं। और कई बार हम जब ये सोच

सोचता है ना ब्रेक फ्री शब्द, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी लाइफ की जिन्हें हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें करनी चाहिए। पर कई बार हम बड़ी पिक्चर देखते देखते छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, बहुत ही मामूली, बहुत ही आम सी। चलिए एग्जाम्पल देती हूँ, ज़रा सोचिए, आप इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं लेकिन आपको रेडियो पर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे, सिर्फ गाने बजे बैक टू बैक नॉन स्टॉप लगातार। बस इमेजिन कीजिए, हाइपोथेटिकली आपसे मैं बात करना बंद कर दूं, आपको सिर्फ गाने सुनने मिले, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना दिया जाए, ना फोन्स रिसीव किया जाए, ना आपके कोई रिक्वेस्ट रिसीव की जाए, बस आपको सिर्फ सुनना है, आपकी कोई भी कहते हैं ना कि आपकी रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रियाएं, आपके जवाब, सवाल, कुछ भी यहाँ तक हम तक ना पहुँचे या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो आपको शुरुआत में गुस्सा तो आएगा, चलिए गुस्सा ना सही, बुरा तो लगेगा, फिर धीरे धीरे आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे और कहेंगे ये तो ऐसे ही होता है, कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। बस यही है, धीरे धीरे दूरियां और बस नाम का कनेक्शन। यहां इस वक्त कितने लोग हैं जो मुझे अपने दिन की या साल भर पुरानी बातें मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं, पर क्यों, हमारा रिश्ता क्या है? रिश्ता है सुनने का, रिश्ता है जहाँ मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप सुनते हैं और अगर आप जब कहते हैं तो मैं सुनती हूँ, भले ही कई बार हमारी सहमति ना हो लेकिन हम सुनते ज़रूर हैं। और ये तो आप भी मानते हैं कि हम कोशिश ज़रूर करते हैं, ये है रिश्ता हमारा, बातों का रिश्ता। वेल, अगर अभी भी आप नहीं समझे कि आखिर मुद्दा क्या है ब्रेक फ्री का आज, तो बने रहिए गानों के उस पार, दोबारा मिलेंगे कुछ और बातें करने।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्युझिकली yours.
2: वेल, अगर अब अभी अभी सुई घुमाकर हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं रिश्ते और अपनेपन की. और जब कोई आपको इस अपनेपन में सुनना बंद कर दे तो रिश्ता और भरोसा दोनों टूटता है, उस इंसान से भी और खुद से भी. जब बस एक ही इंसान बात करे तो उसे बातें नहीं, उसे बोलना कहा जाता है या फिर भाषण कहा जाता है. सच बताना, जब कोई आपकी ना सुने या आपको बोलने ना दिया जाए तो घुटन तो होती होगी ना, जैसे कोई पत्थर रखा हो सीने पर या फिर कोई गले में कोई चीज अटक गई हो. अंदर बहुत ही ज्यादा बेचैनी और घुटन नहीं होती? गुस्सा तो आता होगा, इतना गुस्सा कि शायद आंसू निकल जाए. बस उसी से आज ब्रेक फ्री हो जाओ. तब तक बोलो जब तक आपको सुना ना जाए. शायद सामने वाला बिजी हो या शायद ना सुनना चाहता हो, पर आपको एक क्लोजर यानी कि आपको जवाब मिलना जरूरी है. आज हम बात करेंगे क्लोजर की, अपनी बात बेझिझक रखने की, सवाल पूछने की और सबको सुनने की. ये सिर्फ बात करने की बात नहीं है, सुनने की भी बात है. आपको किसी की बातें पसंद आए या ना आए, लेकिन सुनना एक तरह से रिस्पेक्ट देने की बात होती है. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें राह चलते देखते हैं, हमें लगता है हमें बोलनी चाहिए पर हम नहीं बोलते. हम इंतज़ार करते हैं कि शायद हम नहीं तो कोई और बोलेगा, पर बोलिए ज़रूर. उसी डर का सामना करना है, उसी से ब्रेक फ्री होना है. एक किस्सा भी ज़रूर हुआ है आसपास जो मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन इस अगले गाने के बाद.

0: पीयू बोले वो तो बोलेंगे, पपी हाँ बोलेगा, हर कोई बोलेगा, लेकिन आप कब बोलेंगे?
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
0: देखिए, जब हमारे अपने कोई गलत काम करते हैं या फिर उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। तो जब आप इस देश को अपना मानते हैं, इस देश को अपना घर मानते हैं, और इस घर में जब कोई गलत कर रहा होता है या कोई किसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, तो आप उन्हें क्यों नहीं बता सकते? व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, यानी हम एक नागरिक हैं, इतने शान से, तो क्यों हम अपनी नागरिकता भूल जाते हैं? मैं कह रही थी ना आपसे कि एक किस्सा शेयर करती हूँ, तो चलिए किस्सा बताती हूँ। कई बार हम कितने बार देखते होंगे, ट्रेन में सफ़र करते करते कोई अगर कचरा फेंक दे बाहर, हम कभी नहीं टोकते। रोड क्रॉस करते वक्त सिग्नल तोड़ दे, हम कभी नहीं टोकते। कितनी बार हमने, कितने ही बार नज़रअंदाज किए हैं चीज़ें, कि अरे ये लोग सुधरते नहीं हैं, जाने दो, हमको बोल के क्या मतलब है, हमारे थोड़ी पहचान वाले हैं। कई बार तो ये डर होता है कि जो गलत कर रहा है शायद वही आपको सुना दे। और क्यों क्यों झगड़े मोल लेने, क्यों बोलना, हमारे तो हमारे पास वक्त नहीं है, हमें देर हो जाएगी। कोई मुसीबत में है तो मैं क्यों, कोई और भी तो है कर देगा मदद। हम देर होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, शायद अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इस शहर को देखा है, मैं जब शहर से बाहर जाती हूँ तब मैंने लोगों को देखा है किस तरह लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं कई लोग जो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसी शहर में, उसी गांव में मैंने कई लोगों को देखा है जो बिना परवाह किए कि वो आपको जानते हैं या नहीं, आपको मदद ज़रूर करते हैं। बस हाथ आगे बढ़ाने की देर है, बात करने की देर है, पूछने की देर है, राह चलते चलते हाल पूछने की देर है कि आप कैसे हैं, यहाँ कैसे जाया जाता है, इस जगह की खूबियाँ बताइए। बस छेड़िए तो सही बात, फिर देखिए आपको पता चलेगा असली भारत क्या है और भारत के लोग क्या हैं। पर कहीं ना कहीं हम डरते हैं, हम डरते हैं कि हम कैसे बात कर लें, कोई शायद इतना बिजी हो कि हमें उल्टा ना कह दे, हमारी सोच इतनी आगे चल जाती है कि हम बेझिझक बात करना अपनों

0: से ही बात करना हमें डर लगने लगता है। बस इसी डर से ब्रेक फ्री हो जाइए, एक बार एक कदम आगे बढ़ा कर देखिए। क्या पता आपको कितनी राहों पर या फिर किसी गलियारे में नया दोस्त मिल जाए और एक अलग भारत आपको नजर आए।
1: बिन पू

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: 11:51 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स विथ मी आरजे भावना, जहां ब्रेक फ्री प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। और मैं चाहती हूँ इस ब्रेक फ्री में हम वो भारत के जज्बात को फिर से लेकर आएं जहां पर हम बात करने से कतराते नहीं थे, प्यार से किसी को बताने के लिए कि आप जो कर रहे हैं शायद इसे आप अलग तरीके से कर सकते हैं, बताने के लिए चूकते नहीं थे। हम सिटीजन ऑफ इंडिया बड़ी शान से कहते थे और हर एक जगह अपना घर मानकर चलते थे। वेल, इसी बात पर मैंने आपसे कहा था ना कि बातें कीजिए। बातें यानी कि जब आप बात करते हैं किसी से तो वो दो तरफा होती है,

आप किसी को कहें वो सुने, फिर वो कहें तो आप सुने। सहमत रहना नहीं रहना आपकी चॉइस है, लेकिन सुनना इज़ अ वे ऑफ रिस्पेक्ट। आप सम्मान करते हैं जो आपको अपनी बात सुनाने की अहमियत और इज्जत देता है, क्योंकि वो आपके या आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मानता है, आपसे कुछ उम्मीद रखता है।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: वेल 107.1 FM रेनबो पर इस वक्त जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, आज हम ब्रेक फ्री पर बात कर रहे हैं दिल खोलकर बात करने की। जनाब, प्यार, गिले, शिकवे और गुस्सा उन्हीं से रखते हैं जिनसे उम्मीद हो, वरना अजनबियों से आप क्या उम्मीद रखते होंगे। वेल, अजनबियों से आप किस्सों की उम्मीद रख सकते हैं कि कभी कभार आप किसी ऐसे इंसान से हाय हेलो कर लो और क्या पता चला आपको वो इंसान आपके ही शहर के बारे में कोई ऐसी बात बता दे जो आपको शायद पता ही ना हो। वेल, ये चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है। तो इसी के साथ आज से कोशिश कीजिए बातें करने की। हमने बोलना तो सीख लिया है, ABCD सीख ली, क ख ग घ सीख लिया, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भूल चुके हैं। किस तरह अपनी आवाज़, अपनी बातें रखें ये भूल चुके हैं। वेल, बातें करना भूलिए मत, बातें कीजिए, सुनिए भी, अपनी बात सुनाइए, चाहे आपकी शिकायत हो या दिन भर गुजरी हुई आपकी ज़िंदगी या फिर शायद कोई कहानी जो आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी हो। क्योंकि क्या है कि हमने लोगों से और खुद से बातें करना छोड़ दिया है। बस एक TTYL कहते हैं ना, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, फिर कभी चलो मिलते हैं, ये कहकर टालना शुरू कर दिया है। इमोजी डालकर बस बातें खत्म, जो कि एक्चुअली मैंने आज किया है आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने मैसेजेस के रिप्लाई सिर्फ इमोजीज के साथ दिए हैं, यानी कि मैं बिजी थी, वरना आपको पता है मैं कभी नहीं करती ऐसा। वेल, विद दैट इस वक्त छोटा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बात कर ली है मैंने भी, लेकिन ब्रेक के उस पार आपसे मिलूंगी म्यूजिक कैफे प्रोग्राम में। सो कीप लिसनिंग, क्योंकि आप लोगों की अप्रिसिएशन पोस्ट यानी कि सराहना भी तो बाकी है। वेल, आप लोगों के नाम मैंने लिख लिए हैं, सो मेक श्योर आप सुन रहे हैं हमें, बने रहिए FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

12 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचार। नीट एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार हेतु विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर सभापति ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। भारत के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, ईरान के आलमूत महल और संबंधित किला तथा जॉर्डन के अकाबा समुद्री संरक्षित क्षेत्र सहित 25 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन 25 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला दक्षिण कोरिया के बुसान में 19 से 29 जुलाई तक आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान लिया गया है। 48वें सत्र के दौरान रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना के अनुसार कवि और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कवि के मेयर विताली क्लिट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल

0: तमिल रहने वाले अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो संदेश के जरिए अपने 20 वर्षों से अधिक लंबे क्रिकेट सफर को विराम देने का ऐलान किया। इस घंटे के समाचार में बस इतना ही।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
0: 12:02 हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1। प्रोग्राम हमारा म्यूजिक कैफे शुरू हो चुका है और आपका स्वैग से स्वागत है। वेलकम बैक मुंबई, इन फैक्ट ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी हमारे जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबका वेलकम है। पिछले घंटे हमने बात की कि बोलना और सुनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपके पास सवाल नहीं होंगे, आप सुनेंगे नहीं तो आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी, ना ही आपको कुछ बातें पता चलेंगी। आप बोलेंगे नहीं तो कोई आपको नहीं समझ पाएगा और बातें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो बोलना कितना ज़रूरी है, समझ रहे हैं भाई? हमें तो बोलने के भी पैसे मिलते हैं। वेल विद दैट आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर चलिए आपको पहले गाने सुनाती हूँ, फिर बातें तो होती रहेंगी।

12:09 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स, मेरी आरजी भावना के साथ, जहां म्यूजिक कैफे प्रोग्राम चल रहा है। और लेट मी टेल यू, जो लोग अभी अभी इस कैफे में हमारे साथ टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि जब बात सुनने और सुनाने की आती है तो म्यूजिक से बेहतर कोई जरिया नहीं होता। और ये गाने आपको बहुत कुछ बता रहे हैं जो शायद मैं आपको ना बता पाऊं। प्रेम नगरिया की डगरिया चलो भैया, समझ रहे हो? वेल, गाने सिर्फ धुन नहीं होते, ये वो बातें हैं जो शायद हम जो नहीं कह पाते वो गाने कह जाते हैं। तो इस कैफे की पहली म्यूजिकल डिश आपको कैसी लगी? वेल, इसकी सेकंड डिश पेश कर रही हूँ, थोड़ी अलग है, वाइब चेंज है, लेकिन ये मोह जो है ना, ये अच्छे धागे जो, वो बताएगा आपको। यानी कि मोनाली ठाकुर की आवाज़ में मोह मोह के धागे इज द नेक्स्ट सॉन्ग जो आप सुनने वाले हैं। लेकिन बने रहिए, बिकॉज गाने के उस पार कुछ और बातें करनी है। तो मैं यूं गई और यूं आई।

0: अपने व्यापार की अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 12:16 ऑन द क्लॉक FM रेनबो के म्यूजिक कैफे में अभी अभी ट्यून करने वाले सभी लोगों का स्वैग से स्वागत है, क्योंकि हमें तो काफी लोग पहले से ही सुन ही रहे हैं। नए लोगों का वेलकम करते हैं, और अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बता दूं, एंड ऑफ द प्रोग्राम यानी कि हमारा जब हिट एंड हॉट प्रोग्राम होगा उस वक्त मैं देने वाली हूँ एक अप्रिसिएशन कॉल आउट टू ऑल द लिसनर्स। और ये किस चीज़ के लिए होगा, किस लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रही है बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और आपकी अटेंडेंस देनी पड़ेगी। आप कैसे बता सकते हैं आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं इस वक्त, व्हाट्सएप कीजिए 8657661071 पर हमें मैसेज भेजिए। एंड विद दैट, चलिए अब आपका मूड थोड़ा अलग करते हैं। और जब मैंने एक और वैसे बात कही थी आपसे कुछ देर पहले, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि आप बातें कीजिए, कहानियाँ सुनिए, कहानियाँ सुनाइए। और जब मैं आपसे कहानियों की बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक और बात आई, हम में से कितने लोग हैं जो आज भी उस वक्त को याद करते हैं जब दादा दादी या नाना नानी से हम कहानियाँ सुना करते थे। मैंने सुनी है अपने नाना से बहुत सारी कहानियाँ, अपने दादा से उनके जवानी की कहानियाँ। कई बार बातों बातों में ही वो अपनी कहानियाँ बता देते थे, उसके लिए हमें एक अलग वक्त नहीं निकालना पड़ता था, बस सुनने की देर थी। उनकी शिकायतों में भी उनकी कहानियाँ होती थी, पर हम सुनते कहाँ थे, हम तो मुंह फेर लेते थे, हमें लगता था ये तो बस बोल रहे हैं। लेकिन वो कहानियाँ विरासत हैं, उन्होंने हमें इंसानियत और प्यार का पहला सबक सिखाया। आज इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर थोड़ा वक्त अपनों की बातों को दीजिए, सुनिए और सुनाइए, क्योंकि अगली बार जब आऊंगी तो आप अपनी कहानियां तैयार रखिएगा, कोई ऐसी कहानी जिसने आपको एक सबक सिखाया हो, इंसानियत का एक पहलू बताया हो, जिसने आपको प्यार सिखाया हो, जो जिंदगी का सबक यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी आपकी हो, आपकी विरासत, आपके दादा दादी की कहानियां, या फिर कोई ऐसी घटना ही सही जिसने आपको कुछ नई बात बताई हो, आपके नजरियों को बदला हो, बुरे से अच्छा और सत्यमेव जयते की बात सिखाई हो। बेस्ट कहानियां जो होंगी उन्हें मैं रेडियो पर सुनाऊंगी। दैट्स राइट, अगर आपकी कहानी है बेस्ट तो मैं उसे रेडियो पर सुनाऊंगी। अब बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल करेंगे और हर एक चीज़ आप इंटरनेट के ज़रिए बताएंगे, बट बेस्ट का मतलब है जेन्युइन, सच्ची, जिसमें कोई ग्रामर या शब्द नहीं, जज्बात मिलेंगे, दिल से लिखी हुई जैसे कि वैसी कहानी, आपकी कहानी पर मेरी ज़ुबानी। अपनी कहानियाँ और अपनी अटेंडेंस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ आप अगली बार भेजेंगे, अटेंडेंस लेकिन आज ही चाहिए। विद दैट, चलिए आपको अगला गाना सुनाती हूँ, क्योंकि ठीक 12:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग, और फिर ठीक 1 बजे आप सुनेंगे समाचार, और समाचार के उस पार हमारा रिक्वेस्ट आर विच इज हिट एंड हॉट। विद दैट, आपके लिए अगला गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, और उसके बाद कुमार सानू की आवाज़ में, तो गाने बैक टू बैक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायण।

0: सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
0: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
1: श्रोताओं आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
0: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोता, उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
0: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं, आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओं आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता।

0: मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो,
6: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
7: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
8: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
1: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो च

0: जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। दो सप्ताह बाद यानी

0: 21 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
1: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूं।
2: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: आप
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के

0: क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था। अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

1:05 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1। मैं हूं आरजे भावना आपके साथ और हमारा प्रोग्राम हिट एंड हॉट रिक्वेस्ट आर शुरू हो चुका है। वेल विद दैट आपको बता दूं आज की तारीख स्पेशल क्यों है, लेकिन उससे पहले ये अगला गाना।

1:10 हो रहे हैं। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में आपने ये गाना सुना फ्रॉम द फिल्म मुझसे शादी करोगी। वेल, आज सेलिब्रेशन तो बनता है, आज आ सोनिए माहिए आ जाइए। आज सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन लेट मी टेल यू, आज की रिक्वेस्ट में स्पेशल है सोनू निगम। दैट्स राइट, क्योंकि आज बहुत सारी एनिवर्सरीज हैं, सिर्फ सोनू निगम नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार, ऐसी फिल्में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं जो कि आज के दिन हुई रिलीज, और आज के दिन जो गायक हैं हमारे, हमें सौगात के रूप में उनके गाने और उनकी आवाज़ें सुनने मिलती हैं। एंड ये गाना इस मूवी से सोनू निगम की आवाज़ में, द रीज़न बीइंग क्योंकि आज सिर्फ सोनू निगम नहीं बल्कि इस मूवी की भी एनिवर्सरी है। दैट्स राइट, मुझसे शादी करोगी 30 जुलाई 2004 में हुई रिलीज, 22 साल हो चुके हैं इस फिल्म को। डेविड धवन ने डायरेक्ट की है इस मूवी को, जहां पर इस फिल्म में, लेट मी टेल यू, अगर आपको याद नहीं है तो ऑफकोर्स आपको याद होगी, अगर आपने देखी नहीं है तो लेट मी टेल यू, फॉर उन लोगों के लिए इसमें है अक्षय कुमार, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, अमरीश पुरी, सुप्रिया कार्निक, राजपाल यादव, सतीश शाह, कादर खान जैसे दिग्गज कलाकार। तो ऑफकोर्स जब ये एक कॉमेडी लव स्टोरी एक साथ मिलकर आती है तो ये मूवी बेमिसाल बन जाती है। एंड सिंगर्स तो आप सुन ही रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर साजिद अली, वाजिद अली, अनु मलिक, सलीम सुलेमान मर्चेंट, सलीम मर्चेंट एंड सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़। चार चांद क्या, ये तो सितारे ज़मीन पर आ जाए पूरे। वेल विद दैट, आपको बता दूँ ये गाना रिक्वेस्ट किया था हमसे प्रणव शिंदे, यश शिंदे, प्रकाश शिंदे जी ने। एंड अगला गाना आप सुनने वाले हैं सोनू निगम श्रेया घोषाल की ही आवाज़ में, बैक टू बैक दो गाने, जहाँ पर पहली रिक्वेस्ट आई है हमारे पास अजय साकरे इंदौर से, पंकज माहौर जी की अमरावती से, और उसके बाद दीपा पालकर जी की। सो ये तीन लोगों की रिक्वेस्ट, बैक टू बैक दो गाने। आपको कौन सा गाना सुनना है सोनू निगम जी का, डू लेट मी नो। और हाँ, अब रिक्वेस्ट तो बहुत आएगी, पर क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं रिक्वेस्ट उन लोगों की

करने वाली हूँ जो गाने मुझे हटके लगने वाले हैं। सो आप कौन सा गाना सोनू निगम का? आई नो उनके बहुत सारे गाने हैं जो बेमिसाल हैं, और ऑफ कोर्स हम इन आधे घंटे या फिर इस एक घंटे में भी, जो कि बहुत कम है हमारे लिए, पूरे गाने प्ले करना पॉसिबल नहीं है, बट आई वॉन्ट यू कि आप मुझे वो गाने सजेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं कि लोग बहुत ही रेयर हैं और या फिर भूल चुके हैं पर उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए। गिव मी द रेयर जेम ऑफ सोनू निगम। वेल विद दैट दो गाने बैक टू बैक फॉर यू।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: 124 ऑन द क्लॉक 12:130 यानी 1:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार और 1:40 पर दोबारा हम हाजिर हो जाएंगे हिट एंड हॉट प्रोग्राम लेकर, यानी कि उसके बाद हमारे पास बहुत कम वक्त बचेगा। अब सोनू निगम की बात है तो सोनू निगम के बारे में कौन नहीं जानता। ऑफ कोर्स ये वो शख्सियत है जिनके बारे में हर कोई जानता है कि वो एक नामी सिंगर है, लेकिन लेट मी टेल यू, इनके गाने भी कोई ऐसे नहीं है कि आप 1 घंटे में या फिर 15 मिनट में पूरे गाने आप सुन लें, और ऐसा भी नहीं है कि आप 1-2 लाइन सुनो और आपका मन भर जाए, पॉसिबल ही नहीं। एंड आई नो ये जो वक्त है यहाँ पर आप सब अपनी ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं, आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो, मुझे बहुत सारी मिन्नतें आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज़ प्लीज़ प्ले कर दीजिए, यकीन मानिए मत कीजिए क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे पास जितना वक्त है उतने में 1 या 2 गाने बड़े ही प्यार से दिल से सुनते हैं। और जाने से पहले, क्योंकि आपको मैं गाने सुनाने वाली हूँ, बातें कम करूँगी, लेकिन जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में किया था आपसे वादा कि एप्रिसिएशन जो है वो ज़रूर हम बात करने वाले हैं। एप्रिसिएशन किस बात की कि आप इस डिजिटल ज़माने में अभी भी AI नहीं इंसानों को और उनके जज्बातों को चुनते हैं, आज भी कहानियाँ सुनाने वालों को सुनते हैं, जज्बात समझते हैं, सिर्फ गाने नहीं बातें सुनते हैं और शायद कुछ सीखते भी हैं। जिंदगी का एक सार ये भी है, सो थैंक यू इस जज्बात को और इस कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आप जिंदा हैं ये साबित करता है कि आपका दिल अभी भी धड़कता है इंसानों के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए। तो जो लोग अभी अभी हमसे हमारे साथ जुड़े हैं, जो कोशिश करते हैं कि हमें हर बार सुनते रहें, सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और यकीन मानिए मैं सबके नाम मैं नोट कर रही हूँ और नाम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट और जुड़ते जा रहे हैं, बट जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े, जिनके मैसेजेस आए हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। मुकुंद कुलकर्णी पूना से, ज्योति घाटो लकोला, विजेंद्र घाटो लकोला से, दीपा पालकर माहिम, डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से, विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी, पेंटर बाबू रामगंज खांडवा MP से, प्रमोद चिंचोलकर अकोला से, पंकज महौड़ अमरावती पिंपरी से, राजेंद्र परमार, प्रणव शिंदे या शिंदे मुंबई से, शुभलक्ष्मी मस्तकर अंधेरी ईस्ट, फिरोज सिगनपोरिया राम प्रजापति, अजय साखरे इंदौर से, महेश बोरा अजमेर राजस्थान, आदर्श कनौजिया दादर मुंबई, ओंकार काटकर गारडी पंडरपुर, राकेश माथुर पूना से, मिलेश गजानन राउत, श्रेया मिलेश राउत, आर्या मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से, शुभदा पुणे से, धनंजय वाशी नवी मुंबई, रघुनाथ खानुकर कोल्हापुर महाराष्ट्र, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वाधवन, वैश्वीयन ज्योत अविनाश काडू वाधवन टिगरेपाड़ा से, बाबा दादर से, विठल मुंग से, अहिल्यानगर से, शुभांगी गायकवाड़ छत्रपति संभाजीनगर वेजापुर, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी पिंगवाला चौक गुराया जलंधर से, एंड वी ऑल्सो हैव राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी फरांसी जिला हिसार से। टू ऑल द पीपल जो कहते हैं ना कि हमारी तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि हम आए गए दिन बदलते जाते हैं, चीज़ें आगे चलती जाती हैं और पुरानी चीज़ें छूटते जाती है, तो ये एक छोटा सा सबूत है कि वक्त बदल जाए, ज़माना बदल जाए, लेकिन गानों का असर और रेडियो की जज्बात अभी भी जिंदा है, और आप लोग हैं जो इस जज्बात को, इस मीडियम को जिंदा रखते हैं, और इसी चीज़ के लिए सराहना करते हुए आप लोगों के लिए एप्रिसिएशन कॉल था ये, सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सुनते रहिए और इसी धुन में गुनगुनाते रहिए। नेक्स्ट सॉन्ग सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम विजेंद्र घाटोल और ज्योति घाटोल अकोला की, और उसके बाद मिलते हैं समाचार के उस पार।

आए डाई हार्ड फैन हमारे, हम कदर ना जाने। well, ये गाना तो नहीं है पर हाँ मजा आ गया सुन के। क्यों वैसे ऐसे ही गानों में हमारा नाम शामिल कीजिएगा, ऐसी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास गुरमीत सिंह, मीता सिंह, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। वेल लेट मी टेल यू, मैं हाल ही में दिल्ली जाकर आई हूँ और एक चीज मुझे बेहद प्यारी लगी, दिल्ली है दिलवालों की। सच कहती हूँ मुझे बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं लगा है, ये एक अपनापन जो मुझे यहाँ मिलता है वो वहाँ भी मिला। जैसे यहाँ के लोग हैं एकदम अपने से, वैसे वहाँ के भी लगे। तो क्यों हम ये सरहद बनाकर यूं बांटते हैं यार, मुझे लगता है कि हम

मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। वेल, इसी बात पर एक और चीज़ याद आई है। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, उस ट्रेन में हर एक जगह से, हर एक प्रांत के लोग आए हुए थे। कोई दर्शन करके आया, कोई काम से आया था, कोई अपने घर लौट रहा था, कोई काम पर जा रहा था। और यकीन मानिए, मैंने उस एक रेलगाड़ी में अपने भारत को देखा है, हर एक कोने कोने से। दैट इज वन मेमोरी। इसलिए मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि लंबा सफ़र रहे, लोगों से मिले, लोगों से बातें करे, तो कहीं ना कहीं भारत का असली स्वाद सिर्फ खाने नहीं बल्कि लोगों से बातें करने में भी पता चलता है। वेल, आई एम गेटिंग इमोशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, प्रणीता, सिद्धांत गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, टुक टुक गवहानकर, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा, वर्डिंग खेड़ा पंजाब से हमें सुन रहे हैं, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल एंड विलिस डिकैस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से, दिग्दर्शन, कविता गौड़ मेरठ कैंट से, स्वर्णा सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह पोत्रे, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, लोहगढ़, ठाकुरवाला जिला, फिरोजपुर पंजाब से हमें सुन रहे हैं, मंगेश जोशी 5 बजे सुबह से हमें सुन रहे हैं रोहा से, एंड वी ऑल्सो हैव मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बालवीर सिंह, मुरादाबाद, दुल्हापुर यूपी से। एंड अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं, बड़ी प्यारी और नई रिक्वेस्ट, रेयर सॉन्ग, प्रांजल प्रसाद पाटिल की, जोगेश्वरी मुंबई से गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक बेहतरीन गाना जो आप सभी के लिए मैं करने वाली हूँ प्ले, विच इज अभी मुझ में कहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये गाना बेहद पसंद आने वाला है। आधे से ज़्यादा लोगों ने इसी गाने की रिक्वेस्ट की है, तो दो गाने बैक टू बैक। एंड विद दैट मैं लेती हूँ इजाज़त, और अगर आपका नाम रह चुका है तो वेल आई एम ट्राइंग। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट भली ना आई हो, लेकिन आप लोगों के नाम, आप लोगों के मैसेजेस मुझे पहुंचे हैं, एंड मैंने कोशिश की है आप सबसे बात करने की। बट अगर आप ने हमसे बात नहीं की आज, तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लीजिएगा। अगली बार मैं जब आऊँ तब आपकी कहानियाँ तैयार रखिएगा। ऑलराइट, विद दैट मैं आरजे भावना लेती हूँ इजाजत, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, लेकिन कीप लिसनिंग एंड ट्यूनिंग एंड डांसिंग टू द बीट एफएम रेनबो 107.1, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

चलिए गुमसुम भी मत रहिए इतना, आ जाऊंगी बड़े जल्दी आ जाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको मैं बता दूं, चंद्रशेखर मुलेकर हमारे साथ जुड़े और गुरमीत सिंह, मीता सिंह तो हैं ही, ज्योति अकोला से, ओमकार काटकर पंढरपुर से, गोपाल सपकाल नंदूरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए और सुनते रहिए ये गाने, सोनू निगम के गाने। ऑफकोर्स आप जितना सुने उतना कम है, और सोनू निगम क्यों, हमारी इंडस्ट्री में इतने बेहतरीन गाने हैं कि वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और ये वक्त मेरे जाने का है। तो चलिए विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सभी की जो मोस्ट फेवरेट टॉप रिक्वेस्ट थी सोनू निगम की, वो आपको सुनाए जाती हूँ अभी मुझ में कहीं अग्निपथ से। टेक केयर एंड कीप लिसनिंग, कीप ट्यूनिंग एंड मुस्कुराते रहो यार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज्ड बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहेगा।

0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
3: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर

0: समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावण मेला शुरू हो गया है।
4: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम

चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में

0: मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहां भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता
0: जी।
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता, आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर। मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा, जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं, इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट इस बात को महसूस कर सकती हूँ। मैं
1: आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशन पर जाते हैं, वार्ड्स पर जाते हैं, ऑपरेशन पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज दुकान वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।

0: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, मम्मा कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास यू नो जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ्स, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खासतौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर हैं, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुँच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है जैसा कि आपने बताया कि जब घर जाए तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा। तो इसके भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज़्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
1: अच्छा।
0: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल ख़त्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे ख़राब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज जहां तक मेरे लिए बात है। भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
0: नहीं, मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था।
1: अच्छा।
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
1: वाह क्या बात है, क्या
0: मतलब
1: बात है?
0: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं।

0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गईं।
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना, जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ। और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसे कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हट के खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था, सो ये मैं ज़रूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था, वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूँ, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था, उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7ों के 7ों एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
0: अच्छा,
1: सो 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया, और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
0: वाह, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
1: हम ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज था। एक होता और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था, तो हम 4 थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था

0: आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा, और देखा कि फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है। जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्ज़ाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई। और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो वहाँ से कॉल अप लेटर आ गया SSB का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ गए। वहाँ पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफ़ी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा। अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ GTOs वाला जो काम था वो भी आ गया। तो वहाँ फिर लाइनअप लगी, तो वहाँ पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा।
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज़ पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कैनन साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन जैसे आपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीज़ों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियाँ भरपूर करते थे, शैतानियों से ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में, सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ के
1: क्या
0: बारे? जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोल कर निक्कर पहनकर बारिश में भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
1: वाह।
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ।
1: अच्छा।
0: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए, और फौज की मौज के लिए।
1: वाह क्या बात है, वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको

जेंटलमैन बनाया और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। वाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए

0: और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है। और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आँख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तू करेगा। सो दैट इज़ द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें ये नज़र नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज़ अ स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस को अगर स्ट्रिक्टनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज स्ट्रिक्टनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे।
0: अच्छा।
1: आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माय फादर वाज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो, देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूँ ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को ही।
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप उठी गए

0: ओटीए चेन्नई जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की, उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए, तो पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ.
0: अच्छा.
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है. तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा. लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो उस समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे. और आज मैं कह सकता हूँ तब से लेकर अब तक कभी कोई राइट नहीं हुआ मेरठ में. तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था. और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला. तो मेरे को आज भी याद है हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहाँ थे, जहाँ पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था. तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन. और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूँ. तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया. मैंने कहा अगर यहाँ तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा. लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो वाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड. मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर. सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें.
0: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे कि आप खुद एक डेस्टिनी लावर हैं कि किस तरह से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उसी तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा.
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी.
0: अच्छा.
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ. मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं. मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं. सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए. हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे.
0: वाह क्या बात है. ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग. आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है. क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था. इसमें कोई शक नहीं है मुझे. आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं.
0: वाह क्या बात.
1: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे. और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है. मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ या मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ. मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए.
0: बहुत खूब, बहुत खूब. तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर.
1: देखिए मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर
0: जी,
1: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएन के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई. सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हमारी श्रीनगर में शादी हो गई.
0: वाह क्या बात है. तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
1: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में तो जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड,
0: क्या बात है,
1: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा, दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो उन सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए, मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528वां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
0: शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जिस वक्त सुन रहे होंगे, वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप ये जरूर बताएं, और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब

0: मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
1: अभी तक
0: ये वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
1: वाह।
0: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती है मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव। मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
1: वाह, आपने आज निशब्द कर दिया आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू। किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं। कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
0: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं। बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है। मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
1: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूं। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
0: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव और सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूँ और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर।
1: क्या?
0: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
1: क्या बात है।
0: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहाँ कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं

0: अपनी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
1: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको सच्चा प्रणाम, सच्चा नमन।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। 5:03 होने को जा रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम है शिव कुमार सिंह और पेशे खिदमत है आपके साथ आपका पसंदीदा कार्यक्रम लव यू जिंदगी, जहाँ अक्सर मैं कार्यक्रम का आगाज करता हूँ लकी अली की आवाज़ में। और कुछ गाने लकी अली के, जैसे हम कहते हैं आज भी जब वो शो करते तो फुल हाउस जाता है, यानी कि इतने साल हो गए लेकिन आज भी अपने आप को प्रासंगिक रखना कोई लकी अली से सीखे।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 5:15 हो चुके हैं। आशा भोसले जी की वही आवाज दोस्तों, लगता बस हमारे इर्द गिर्द यही कहीं है। अदनान सामी ने साथ दिया था, कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम का गाना था। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अपने साथी शिव के साथ आप बने हुए हैं, और मैं आज लव यू जिंदगी में एक उस पहलू को छूना चाहता हूँ जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो ये है कि दोस्तों में, कामकाजी एरिए में, बहुत सारी जगह में, जो पद में आपसे नीचे हैं, चाहे कॉरपोरेट जगत हो, चाहे आप कहीं जाते हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, यानी जिनका भी पद आपसे नीचे हैं, चाहे रिश्ते में हो, चाहे काम की जगह में हो, कहीं भी हो, आप उन्हें ट्रीट कैसा करते हैं बहुत कुछ बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, अगर आपने सर्वर से, या जिसे आप आम भाषा वेटर भी कहते हैं, उनसे किस तरीके

से बात करते हैं, उनसे क्या ऑर्डर देते हैं, कैसे पेश आते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में बताया जाता है। क्योंकि आपने बहुत जगह देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अगर आपको कुछ, बहुत से लोग बहुत सारी बातों में अपना ईगो रख लेते हैं, और मैं मानता हूँ अगर आपको ईगो रखना है या अपने आपको स्वाभिमान से टेस्ट करना है तो उनसे कीजिए जो आपकी बराबरी में आपके ऊपर है। आपसे जो नीचे है ना उनसे मत किया कीजिए, जो आपकी बराबरी में जो आपके ऊपर है उनके सामने अपना ईगो रखिए, अपना स्वाभिमान रखिए। स्वाभिमान तो हर जगह होना चाहिए लेकिन ईगो रखिए, और तब मालूम पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जो आपसे नीचे है ऑलरेडी वो आपकी तरफ, आपके माता आपकी तरफ देख रहा होता है, उनके साथ आप अपना ईगो रख के उनके साथ एटीट्यूड दिखा के क्या फ़ायदा। हो सकता है उस वक्त आपको लगता है कि आपको अंदर ही अंदर से कोई एक अलग सा किक मिलता हो, लेकिन जो तीसरा इंसान देखता है ना वो समझ जाता है आपकी क्वालिटी क्या है। सोचिएगा, गौर कीजिएगा, क्या कहा मैंने। 5:16:38, अगली आवाज़ लकी अली की, गोरी तेरी आँखें।

0: FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: 5:27 हो चुके हैं 107.1 MHz. लव यू जिंदगी, एश किंग, शिल्पा राव और शेखर विजयानी की आवाज में आपने सुना मेहरबा. इसके बाद मैं आपको दो अलग अलग तरीके की गीत सुनाऊंगा. एक है शंकर महादेवन की आवाज में तेरे ख्यालों से, और उसके बाद इस मौसम के अनुरूप तेरी मेरी कहानी अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में. तो मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं पैरेलली एक और बात करना चाहता हूँ. वो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि अपने जिंदगी में बहुत कुछ सोच के रखा है, मुझे ये करना है, मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, मुझे इतना सक्सेसफुल होना है, बहुत सारे बेंचमार्क अपने सामने बांध के रखे हैं. लेकिन इन बेंचमार्क को बांधते हुए और उसे पाने की जो कवायद चलती रहती है, उस दौरान आप जिंदगी को जीना भूल जाते हैं. जिंदगी वो है जो आपसे हर दिन होती है, आपसे टकराती है, आप उसे महसूस करते हैं. सुबह से शाम तक जिंदगी आपके साथ घटित हो रही है, लेकिन आपका ध्यान उसी टारगेट पर लगा है. कितनी सारी कहते हैं ना छोटी बड़ी खुशियां आ रही जा रही, बहुत सारे मोमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, रुक कर किसी चीज़ को एडमायर करना भूल चुके हैं, एक मुस्कुराहट बिखेरना भूल चुके हैं. इतना ज़्यादा आपने अपने आप को सीरियसली ले लिया है, इतना ज़्यादा आप अपने आप में एक्साइटेड होते हैं, अपने आप को बांध रखा है, आप भूल गए जिंदगी के मायने क्या है. थोड़ा सा ब्रीद इन कीजिए, ईजी सीजिए, अपने आप पर भी जुर्म मत कीजिए. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और ये नहीं कि जब मैं उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो ही खुशी मिलेगी. सफ़र को एंजॉय करना सीखिए. सफ़र को SUFFER मत समझिए, सफ़र है जिंदगी का. बहुत कुछ दाएं बाएं दिखाती हुई चलती है, आपको बहुत मज़ा आएगा. लेकिन ठीक है, हर चीज़ को आप कैमरे में कैद करना चाहते हैं और अपनी आँखों के सहारे उस जिंदगी को मिस कर रहे हैं जो बहुत कुछ कर सकती है. ध्यान दीजिएगा, जिस हाल में भी है चेहरे पर एक ग्रिम एक्सप्रेशन मत रखिए, रिलैक्स हो जाइए. अगर आपको यहाँ से वहाँ पहुँचने में एक घंटा लगने वाला तो एक घंटा लगने वाला, उस एक घंटे एकदम टेंशन में रहेंगे कब जाऊँगा, कब पहुँचूंगा, ये ट्रैफिक ऐसा है वैसा है. कंप्लेन करना छोड़ दीजिए. उस कंप्लेन की जगह जिस हालात में भी है उस हालात को आप उसका लुत्फ कैसे उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करके तो देखिए. थोड़ा एक पर्सपेक्टिव चेंज करके तो देखिए, वरना उसी ढंग से जीते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा. फिलहाल आपको हम सुनाते हैं, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत.
0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

자, 시끄시끄둥.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 5:42 और 21 सेकंड हो चुके हैं। आप लोग सुन रहे हैं लव यू जिंदगी अपने साथी शिव के साथ, जिसमें एल्बम्स भी चल रहे हैं, फिल्मी गीत भी चल रहे हैं और बातें वो कर रहे हैं जो आपसे मुतल्लिक हो, चाहे अपना बिहेवियर को लेके हो, जिंदगी के पर्सपेक्टिव को लेके हो, एक रवैये को लेके हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अपने से अगर नीचे से हम बात करते हैं, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, और जो सबसे कीमती चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ जाने जा रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, आप किसको कितनी इज्जत देते हैं, आपका टोन सब कुछ डिसाइड कर देता है और अगले इंसान का दिन भी डिसाइड कर देता है। और अगर मैं दूसरा एक पर्सपेक्टिव से कहूँ कि किसी के बोलने से अगर हमारा दिन खराब हो जाए, अच्छा हो जाए, तो वो हम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसकी बातों का कितना असर अपने ऊपर होने देना है कि नहीं होने देना, आपने होने दिया तो आप मेंटली सोचने लग गए, अपनी तबीयत खराब कर ली, नहीं होने दिया कोई बात, आपने गलत बात की है, आपसे गलती हुई है, वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए की गई हो, उस वक्त बुरी लगती है लेकिन ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए की गई, आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है आपने गलती नहीं की, उसके बावजूद कोई आपको कुछ कह रहा है, सुना रहा है और उसको लेकर आप डाउन है, तो डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो आपको दी गई है लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंसल्ट हो या गलत बातें। अगले गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको सुनाऊंगा अरिजीत सिंह और ज्योति नूरान की आवाज़ में सयोनी, और उसके बाद और भी प्यारे प्यारे गाने हैं, छोटा सा फसाना, खैरियत, क्योंकि हमारा होता है मोर बजाना लेस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना,

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 5:50 और 31 सेकंड हो चुके हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़। महफिल चल रही है लव यू जिंदगी की और हम बातें कर रहे हैं जिंदगी की, तरह तरह की बातें। मौसम हो चुका है सुहाना और इस सुहाने मौसम में आपाधापी में लोग निकलेंगे मेट्रो से, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, अलग अलग हालात में।

ऑन नहीं होता, तो प्रायोरिटी बोर्डिंग करके भी क्या कर लेंगे आप। जिस हाल में है जहां है एंजॉय करना सीखिए। आपको हम सुनाते हैं एक और गीत जो अलग अंदाज लिए हुए सुनिधि चौहान की आवाज़ होती है हमेशा, और मैं चाहता हूँ उस गाने को आप सुनिएगा। और इस गाने में जब भी मैं होता हूँ तो एक गलती ढूंढ लेता था, लेकिन इतनी बड़ी सिंगर है ढूंढना नहीं चाहिए। आप सुन लीजिएगा।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: छह बजकर 15 मिनट 107.1 मेगाहर्ट्ज़। ये धुन से आप समझ चुके होंगे गीत कौन सा है। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़। दिल तो बच्चा है जी, अंदाज़े बयां का समय हो चुका है। मैं आपका दोस्त शिव कुमार

0: MHz, musically yours.
1: 6:21 और 36 सेकंड हो चुके हैं अंदाज़े बयां में। आपका हाल चल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में कहीं बारिश, कहीं आराम, कहीं थोड़ी तकलीफें, लेकिन उसके बावजूद मौसम का जो लुत्फ उठाना जानते हो जानते ही हैं, और जो ट्रैवल करना जानते हो जानते हैं। लेकिन आजकल ट्रैवल की परिभाषा ही बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आप महसूस करने जाते हैं, आप टिक मार्क करने जाते हैं, बकेट लिस्ट पूरी करने जाते हैं, यहाँ ट्रैवल करने जा रहा हूँ, इन 10 जगहों को देखना, जब तक इन 10 जगह पे गया नहीं, मैंने फोटो नहीं खिंचवाया, तब तक मेरा ट्रैवल पूरा नहीं होता। आप ऐसे सोचते हैं, या आप जाते हैं, चलते चलते देखते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ ट्रैफिक लोग कैसे फॉलो करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है। हमारी तरह हड़बड़ी में चलते हैं कि बड़े आराम से चलते हैं, सीधे सीधे मोबाइल में से टकटकी लगाए देख के चलते हैं, या दाएं बाएं देख कर चलते हैं। जब आप जाएंगे अपने होटल से, अपने कमरे से, जहाँ भी रहते निकलेंगे, और जो आपने ऑलरेडी प्री प्लान नहीं किया हुआ है, बस चलते निकल जाइए। आप उस तरह के मुसाफिर बन के देखिए, और बहुत कुछ आप देख सकते हैं जो आपका सिर्फ गूगल बताया या आपके दोस्तों ने बताया। यहाँ जाना और यहाँ फ़ोटो खिंचा लेना और दुनिया को दिखा देना, और आप अपनी आँखों से दुनिया देखना पसंद करते हैं या कैमरे की निगाहों से, वो भी तय कर लीजिए। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद सबसे पहले काम करता हूँ, कैसे कैसे हाथ से तो मैं सुनाने जा रहा था जगजीत सिंह के साथ, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, लेकिन उसके पहले मैं आपको सुनवा दूंगा मौसम के ध्रुव अरिजीत सिंह की आवाज़ में, कभी जो बादल बरसे।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्युझिकली योर्स.
2: 6:45 हो चुके हैं. एक गीत जो थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर कर दे, वाला गीत आपको सुनाता हूँ. थोड़ा पेंसिव मूड में ले जाएगा आपको. जगजीत सिंह साहब की आवाज़ है कैसे कैसे हाथ से. और मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि ज़रा एक पॉज लिया कीजिए. बहुत बार जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, चाहे आपकी पसंद की गाड़ी हो या अगर आपने उस चीज़ को पा लिया है तो उसे रिलीज करना भूल जाते हैं. वो आपके लिए रूटीन सी चीज़ हो जाती है कि भाई आपके बिहेवियर से आपको लगता ही नहीं कि यार ये चीज़ आपको हासिल करने की बहुत तमन्ना थी. अब आपने उसे हासिल कर लिया है तो वॉट नेक्स्ट. लेकिन अगर कर लिया है तो उसकी खुशी मनाइए, एंजॉय कीजिए. छोटी छोटी आदतें, आपको जो भी लगता है कि आज मेरा बैडमिंटन खेलने का मन है, मैं टेनिस खेलना पसंद करता था संडे की सुबह, उस चीज़ को कीजिए. आपने हर दिन को रूटीन बना दिया है और अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया है. काम कहते ना कि रोज़गार पैसा आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी, लेकिन वो सब कुछ नहीं है. अगर अपने 10 से 7 का

समय दिया है, 11 से 6 का समय दिया है, लेकिन लोगों ने काम को ही जीवन मान लिया है। ज़िंदगी के मायने और भी है, उसके आगे भी ज़िंदगी, उसके पहले भी ज़िंदगी थी। तो पॉज लेना सीखिए, और हर वक्त इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में आप रहते हैं कि कहीं आप छूट ना जाए। जो हमारे मन में बचपन से भरा गया ना कि भाई उसने ये हासिल कर लिया, उसने वो हासिल कर लिया, तू पीछे छूट जा रहा है। सबकी अपनी अपनी रेस है, अपनी अपनी टाइमिंग है, तो इसके उसके रेस के चक्कर में ना पड़े, अपनी रेस अपने साथ है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और वेलबींग बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा खुद पर ध्यान देना सीखिए। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अंदाज़े बयां अपने साथी शिव के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: ना तो कारवा की तलाश है मन्ना डे, आशा भोसले, सतीश और सुधा मलिक। बरसात की एक रात फिल्म का गाना फिर से धुरंधर में क्या इस्तेमाल किया गया और तो पूरी दुनिया जानती है क्या क्या कमाल हो चुका है इसके बारे में। हम आपको दो गीत सुनाएंगे, एक गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम, गीत है खैरियत, और उसके बाद जो मैं आपको गीत सुनाने जा रहा हूँ मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। अक्सर जब मैं रात के कार्यक्रम करता था इस गीत को मैं अंत में सुनाता था। लोकगीत की बोली है, आप बता दे तुझे कैसे जिया जाता है। मैंने किश्तों किश्तों में अलग अलग सी बातें की हैं, जिंदगी को जीने के तरीके को बताया, दूसरों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, कहाँ ईगो रखना है, कहाँ आत्मसम्मान की बात करनी है, ट्रैवल करने के समय क्या क्या नजरिया आपका होना चाहिए, अब तक आप कैसे करते थे, दूसरों के चश्मे से नजर और दुनिया देखते थे, अपनी जिंदगी की स्टेयरिंग किसी और के हाथ में देते हैं, बहुत कुछ है जिंदगी में। थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए, मैं भी इसलिए धीमे धीमे बात करूँगी। शाम के समय बहुत आपाधापी होती है घर पहुंचने की, आने जाने की, हर इंसान को पता ही नहीं चलता कब सुबह के 9 से रात के 9 बज गए, और जब तक लगता है 9 बज गए अगले दिन की तैयारी शुरू करता है। अगर वो अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड करे तो उसको लगेगा कि बस वही रिकॉर्डिंग, वही पॉज प्ले सब कुछ हो रहा है एंड कोई फर्क नहीं है। दो हिस्सों में जिंदगी को बांट चुके हैं, वीकडेज और वीकेंड्स में। जिंदगी ऐसी नहीं होती है, जिंदगी वही है जो आप बनाते हैं, जिंदगी रोज हो रही होती, खुशी से उसे जीना सीखिए, नए नए नजरिए से सीखिए। यार मैं ऐसा कोई ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ बार बार, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, कहाँ भाग रहे और क्या हासिल कर लोगे भाई। वैसे भी इस दुनिया से कोई जीवित बच के जाने वाला नहीं है, तो इसीलिए जिस भी हाल में जिए मस्त होके जिए। सबसे पहले सुनाता हूँ खैरियत, और उसके बाद आप बता दे तुझे कैसे जिया जाता है। अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ मोर बजाना लेस पकाना सुनाता हूँ गाने पे गाना। इकलौता चैनल 107.1 MHz जहाँ पे नॉन स्टॉप म्यूजिक आप सुन सकते हैं, बाकी जगह तो सिर्फ कमर्शियल ब्रेक चलते हैं, थोड़े बहुत गाने सुना के एहसान करते थे आप पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक। 7:10 और 43 सेकंड हो चुके हैं। 107.1 मेगाहर्ट्ज अपने साथी शिव के साथ आप लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम आपका पसंदीदा हम तुम। और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जो आवाज है मोहम्मद इरफान, सैम बट और अरिजीत सिंह की। फिल्म का नाम मर्डर 2 और गीत है फिर मोहब्बत। और ये फरमाइश आई है आशी की, इन्होंने बेलापुर से इस गाने की फरमाइश की है। आशी, आपके गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। हमारे फोन नंबर्स वही 8657661071, 8657661071।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 7:16:55 हो चुके हैं। अगली फरमाइश हम पेश करने जा रहे हैं फिरोज सिंह पुरिया जी की, जो सोनू निगम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुनना चाहते हैं। अग्निपथ फिल्म का गीत अब मुझ में कहीं, और ये उनका वाकई बहुत ही बेहतरीन गीत है। और साथ ही में फिरोज जी ने शिकायत भी की कि आप मुझे

मौसम ऐसे अवॉइड करते हो, मेरे गाने प्ले नहीं करते. बिल्कुल सही, मैं आपको अवॉइड करते गाने प्ले नहीं कर रहा हूँ. जैसे मैंने कहा, आप हमारे सब जितने पुराने लिस्नर्स हैं जो लगातार हमें सुनते हैं, किसी को भी नज़रअंदाज करने का हमारा कोई भी शौक़ नहीं होता. जितने नए लिसनर्स आते हैं उनका नंबर नहीं लग पाता, तो हम नए नए लोगों को ये करते जाते हैं. जब घर पर खाना भी बनता है ना, तो जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों को अच्छी थाली में परोसा जाता है. जो घर के सदस्य होते हैं ना, उनको ऐसे ही खिला दिया जाता है. तो इसका मतलब नहीं कि उनकी वैल्यू कम हो जाती है. बिल्कुल इस चीज़ को दिल पे मत लगाइएगा. और बहुत सारे लिसनर्स ऐसे ही हैं जिनको लगता है कि हमारे गाने नहीं प्ले हो रहे हैं, 6-7 गाने प्ले होने होते हैं. तो हम इस FM रेनबो को परिवार को और बढ़ाते जाते हैं. उनको भी लगता है कि हमको भी पूछ रहे हैं, और नए सदस्यों के जुड़ने की पूरी संभावना है. और वो फ़ोन नंबर है सदस्य को जुड़ने का, 8657-66-1071, 8657-66-1071. जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी हमसे जुड़े रहते हैं मुंबई के बाहर.

0: Diwali FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: क्या गायकी थी सोनू निगम साहब के इस गाने में। इसके बाद जो मैं आपको अगला गीत सुनाने जा रहा हूँ वो है फिल्म हमारी अधूरी कहानी का, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है दोस्तों ये, और इसकी फरमाइश की है पारुल सोंडाव ने और उनके भाई प्रणीत। नागपुर से ट्यून्ड है ये न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए, तो सीधे मुंबई से नागपुर की ये फरमाइश जा रही है और बहुत ही अच्छे अंदाज में गाया है। और फिलहाल हम इसे आपको सुनवा रहे हैं जो मेल वर्जन की खास तौर से उन्होंने फरमाइश की है, वो अमी मिश्रा की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। पारुल जी आपके लिए गाना पेश।

7:28 और 59 सेकंड हो चुके हैं, 7:29 हो गए हैं। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और इसकी फरमाइश आई है पवई इलाके से, प्रशांत ने की है और ये सुनना चाहते हैं लव आजकल 2 का गाना शायद। प्रशांत फ्रॉम पवई, वाओ क्या बात है। और इसके बाद अगली फरमाइश आ रही है लंदन से और उन्होंने पूछा हमने इलाके का नाम, तभी देखिए टाइप करके भेजते हैं कौन से इलाके से फोन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैसेज कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये गीत हम आपको सुना रहे हैं प्रशांत फ्रॉम पवई और गीत है अरिजीत सिंह की आवाज में शायद लव आजकल 2, 107.1 मेगाहर्ट्ज़, 8657 66 1071।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: शंकराचार्य जी हमारा कार्यक्रम खम्मम तेलंगाना से सुन रहे हैं और कहते हैं कोई फरमाइश नहीं, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बस हमको याद कर लेंगे तो यहाँ तेलंगाना में खुशी होगी। तो बिल्कुल शंकराचार्य जी, हमने आपको याद किया। और अगली फरमाइश आई है लंदन पैडिंगटन इलाके से, और ये फरमाइश की है सुधीर ने, और अपनी फ्रेंड वो अपनी फ्रेंड अलका को काफ़ी मिस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन्होंने उनको कहा है कि वो मुंबई में मेरा कार्यक्रम सुन रही हैं, और भले ही समय अलग अलग हो, वहाँ भरी दोपहर में लंच करते करते उन्हें याद कर रहे हैं, और वो अलका को एक गीत सुनाना चाहते हैं सुनिधि चौहान शरीफ साबरी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जिद, और गीत के बोले तू ज़रूरी। और उन्होंने कहा मैंने आज जिद ठानी थी कि मैं लंच करूँगा, मैं इस कार्यक्रम में फरमाइश करूँगा, मेरी फरमाइश पूरी भी होगी और मेरी फ्रेंड वहाँ सुनेगी भी ज़रूर। आपने दिल से चाहा सुधीर, तो हो भी गया, यहाँ पे आपका मैसेज आ भी गया, हमने देख भी लिया, हमने आपके पसंद का गाना निकाल भी लिया, और अलका मुंबई में बैठकर लंदन पैडिंगटन से आपकी फरमाइश सुन रही हैं। वो सुन रही हैं एफएम रेनबो 107.1 पर, और आप फरमाइश कर रहे हैं और सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप लंदन में बैठकर। यही है कमाल टेक्नोलॉजी का।

रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। 7:40 हो चुके हैं। अगली फरमाइश जो हम प्ले करने जा रहे हैं, उस फरमाइश के साथ साथ हम एक और चीज ये भी ऐड कर देंगे कि इस वक्त असम से हितेंद्र दास जी बताना चाहते हैं कि हम भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप जो फरमाइश प्ले कर रहे हैं हम खुश हैं, बट लेकिन हम भारत के विभिन्न हिस्से से हम इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जैसे तेलंगाना से उन्होंने सुना, यहाँ से हम भी सुन रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल हितेंद्र जी, आपकी बात सर आंखों पर, और इसके बाद हम जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, और वो फरमाइश भी आई है कुछ अलग इलाके से, यानी अलग इलाका यानी हिमाचल प्रदेश से, और इस फरमाइश की है श्रुति ने हिमाचल प्रदेश से, और वो सुनना चाहती है विशाल मिश्रा की आवाज़ में पहले भी मैं, फिल्म का नाम एनिमल। श्रुति जी, आपकी इस फरमाइश को हम बिल्कुल पूरा करेंगे, और आपने कहा हम किसी को गाना प्ले कर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं ले सकते, तो बिल्कुल नाम मत लीजिए, जिसको भी आपने कन्वे करना है वो हो जाएगा इस गाने के जरिए, पहले भी मैं, आवाज़ विशाल मिश्रा की। और इसके साथ दोस्तों अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाज़त, क्योंकि 7:45 से आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो चलेगा ठीक 8 बजे तक। इसलिए हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं आपकी सेवा कीजिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.

0: याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्र गान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्र

0: के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
1: I'll be taking note of it।
2: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
4: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यह फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
2: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
6: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार

0: मीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू LPG उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू LPG की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ISS ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। ISS अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग माय नाइट आउल्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिनेमा ऑन रेडियो। आई एम सो ग्लैड यू डिसाइडेड टू स्पेंड द नेक्स्ट आवर विद मी बिकॉज़ टुनाइट वी आर सेलिब्रेटिंग द मैजिक दैट हैपेंस व्हेन म्यूजिक मीट्स द सिल्वर स्क्रीन। इट्स 8:10:03 ऑन द एफएम रेनबो क्लॉक। दिस इज 107.1 एफएम रेनबो। माय नेम इज मिलेनिया एंड थिंक अबाउट इट, देयर आर सॉन्ग्स वी लव बिकॉज ऑफ द मेलोडीज, देन देयर आर सॉन्ग्स दैट वी लव बिकॉज दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ वन अनफॉरगेटेबल मोमेंट दैट हैपेंस इन अ सीन इन अ मूवी और अ टीवी शो। समटाइम्स अ फिल्म इंट्रोड्यूसेस us to a brand new song. Other times it takes an old favorite and gives it an entirely new meaning. And years later, all it takes is a few new notes and we're instantly transported back to a particular moment, a particular character, or even a particular feeling. Over the next hour, we'll revisit some of those unforgettable songs. Some won Academy Awards, some won other awards like Grammys, some became very big hits because of the movies they were featured in, and some became so closely associated with the film that it's impossible to think of the song without the movie or

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

0: उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ चुनिंदा गजलें जिन्होंने मोहब्बत, तन्हाई, उम्मीद और जिंदगी के हर रंग को खूबसूरती से बयां किया। तो आज की महफिल की पहली पेशकश आप तक पहुंची और अब ये दूसरी पेशकश बहुत ही उम्दा गजल।

रंगे महफिल की महफिल सजी है, गजलें सुन रहे हैं आप। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना लें। अगली गजल अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूँ। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:15 हो गए हैं।

0: जो होता है अक्सर वो अच्छा ही होता है। आज भी हुआ, उम्मीदों की किरण पर अलम के स्याह बादलों का राज भी हुआ। सपनों की गठरी लेकर चल रहे थे हम जिस कश्ती पर, किनारे पर आने से पहले ही वो तबाह हो गया। भीगता डूबता रोता बिलखता जब एक इंसान किनारे पर पहुंचा, तब इन हाथों में फकत गीली रेत देखकर अपनी बदनसीबी पर थोड़ा नाज भी हुआ।
1: हाल ही में लता जी ने सजदा के नाम से एक एल्बम जगजीत सिंह की म्यूजिक डायरेक्शन में पेश की।
2: सजदा, सजदा एक ऐसा कैसेट है जो कि सजदा है गजल को, सजदा है शायरों को, सजदा है गजल के चाहने वालों को। सजदा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मेरी बरसों की तमन्ना थी, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मेरे इस सजदे में लता जी भी शरीक थी।

जिंदगी में जब सब कुछ एक साथ और जल्दी जल्दी करने की ख्वाहिश होती है, सब कुछ तेजी से पा लेने की तलब होती है, तो हमें लगने लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। शायद आपके साथ होता है कैसा?

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हर रात एक महताब देखने के लिए, हर रात एक महताब देखने के लिए हम जागते हैं, तेरा ख्वाब देखने के लिए। जिंदगी में की जाने वाली सारी जस्तजू का आखिरी और वसीतर हदफ सुकून ही तो होता है, लेकिन सुकून एक आरजी कैफियत है। एक लम्हे को सुकून मिलता भी है तो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए उसकी तलाश का अमल भी मुस्तकबिल जारी रहता है। हमने जिन शेरों का इंतखाब किया है वो गहरे इस्तराब और कश्मकश के पैदा किए हुए हैं, आप सुनिए इन्हें और ज़िंदगी की बेनकाब हकीकतों का मुशाहिदा कीजिए। नक्श लालपुरी साहब कहते हैं, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत से मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, बता क्या क्या है।

0: आप सुन रहे हैं रंगी महफिल जरी के संग।
1: कुछ फनकार ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप समझ गए ना, लता मंगेशकर। लता जी जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक फिनोमिना है और इस सदी के लिए एक रूहानी सौगात है।

दे हालात होते हैं जब कोई गमजदा होता है या उसकी ज़िंदगी में गम होते हैं। खुशी हर इंसान को मिलना चाहिए और वो हक है उसका इस ज़िंदगी में आने के बाद। खुशी ज़िंदगी के उन पलों का नाम है जिन्हें हम इंसान खोना नहीं चाहते। ये लम्हे मेहमान की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं हमारे ना चाहने के बावजूद। शायरों ने इन लम्हों को लफ्ज़ों में कैद करने की बहुत ही कामयाब कोशिशें की हैं। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार झोंके कर इधर से भी गुजर जाए। लेकिन उनका क्या जो कि शाम की तन्हाई में आंख में नमी लिए बैठे हैं और कुछ गजलों को कुर्सी पर सिर टिकाए लगातार धीमी धीमी कई दफा सुनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जो घिरे होते हैं उनके लिए यही दुआ कि ऊपर वाला जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में खुशी अता करे और उन्हें गम से दूर करे।

बल्कि जागते हुए भी हम जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंग बिरंगे ख्वाबों में ही तो गुजारते हैं और उन ख्वाबों की ताबीरों के पीछे सरगर्दा रहते हैं। हमारा ये इंतखाब ऐसे शेरों ऐसी गजलों पर मुश्तमिल है जो ख्वाब और ताबीर की कश्मकश में फंसे इंसान की रुदात सुनाते हैं। हर एक रात को महताब देखने के लिए हम जागते हैं, तेरा ख्वाब देखने के लिए, और ख्वाब भी ऐसी हो कि जिसमें तमन्ना फिर से मचल जाए तो फिर दिल क्या करे।

दोस्तों, मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को अगर किसी ने इतनी खूबसूरती से सुर दिए हैं तो वो जगजीत साहब ही हैं, क्योंकि उनकी हर गजल रूह तक उतरती है। वैसे दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाए। रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना भी भयानक हो, शायरों ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ हर रूप में देखा और दिखाया है। लफ्ज जब शायरी में दाखिल होते हैं तो अपनी हदों को लांघते हुए कई दुनियाओं की सैर कराते हैं। रात शायरी को सुनकर आप भी कुछ कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं और इन गजलों में डूब जाते हैं, है ना?

जब गजल में बात हो रही है चले गए की, तो अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि रुखसती का वक्त हो चुका है। हमसे मत पूछिए किधर जाएंगे, थक गए हैं बहुत अपने घर जाएंगे। बेवजह ही हम परेशान हैं जिंदगी के लिए, कई दफ़ा ये लगता है कि जिंदा कहाँ है जो मर जाएंगे। इसलिए कहती हूँ अक्सर कि जिंदगी एक बार मिली है, जैसी मिली है जितनी मिली है बहुत खूबसूरत है, जी लीजिए इसे। अपना खूबसूरत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, इजाज़त चाहूँगी।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया, कहा पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून से परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। वहीं विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट

लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी 12:02 और 22 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो और शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आनंद उठाइए इन प्यारे से गीतों का।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है

0: जनगणना का अभियान, यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि ये राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। वहीं विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना। ये थे अब तक के मुख्य

0: आकाशवाणी।
1: रात्रि के 1:03 हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सुहानी रात।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सगरे गाँव की गोरिया कुछ कुछ मैं छोड़ रहा।

0: फिल्म जय शिव शंकर के सुपरस्टार और प्रोड्यूसर राजेश खन्ना।
1: अपने चाहने वालों को राजेश खन्ना का नमस्कार। मेरी फिल्म जय शिव शंकर को एक खूबसूरत रूप देने में मेरे साथियों का काफी बड़ा हाथ है। इन सब ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इस फिल्म में काम किया है। और आप जानते हैं इस सितारे कौन हैं? इस सितारे हैं जितेंद्र,
2: नमस्कार,
1: टिंपल,
3: नमस्कार,
1: पूनम,

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। वहीं विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: 2:03 हो चुके हैं और आइए, यह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का समय है, वो चला है जिसका नाम है भुलाए ना बने।
1: जय शिव शंकर के सुपरस्टार।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

0: मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए, रेडी 1 2 3 4 ला।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। स्टूडियो घड़ी में 3 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश के विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए जिससे पश्चिम एशिया संघर्षों के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुष के 110 किलोग्राम वर्ग के 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी।
1: 3:03 हो चुके हैं। हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

लाओगे

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: 3:50 हो चुके हैं, सुनते रहिए मिडनाइट मेलोडीज़।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। चार बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुष के 110 किलोग्राम वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। वहीं महिला डिस्कस थ्रो में सीमा कालीरमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हुई। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तराखंड बिहार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 4:02 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सारेगामा।

कार्यक्रम सारेगामा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम अलका याग्निक जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 4:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सारे गामा।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली
1: आए हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।